0: भाई।
1: हाँ।
0: कॉकटेल तैयार है।
1: हाँ। हाँ।
0: पहला जाम आप निकालिए।
1: हाँ। हाँ।
0: सुरापान शुरू।
1: हा हा हा हा। चीयर्स।
2: किसी का इंतजार।
3: कौन है वो?
2: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।